0: तुमको वाफी
1: रिफा म्यांसनुल्ला नुना तिम्यासन तिक्यां सया आर मनाप्यासियां रतेरे कड़ेते तंबाउप शिक्या दिमनुना निफितुंड्रान आर जन मनुना निफितुंड्रान सान्या तिम्यास फत्म्यात्से शकुर फम्यासा अम्फापन सुना आर म्यासा न्यापंदे निफितुंड्रान मातेत्या मायनों ने बात क्यान फरानिस नांगना अरनिस नताके अंतिफा ना वोजांतिया रानिस वोलुआने कोलोनेल मिकाएल्ला फारुआन मालाकास मेरा मेंजा अरसा चिके नुम्तेने जान चिशा वकन्यां दां जान चिशा वकनिस लुटेन जान या फसान मसावा जान तोम ततार अंतिफेरे नेंटी कदेमानों आच्छा वंचकेरेटरेट सिमाइस्ताटेराना फनवाना सिफना वोजने तोम तिफेरेनेंटी Timur zany, sarotra zany, ka nefitsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony hotanterahantsika. Ary tsika dia manampy, ary rehefa manampy dia tena manampy marina, niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka, ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुमको वाफी
1: बमंगा तक हम कोमिन नंबुमंगा केर संजयं बाई सेरों फुकतान नंबुमाइंस फावटन सेने बुमाइंस अनोटन समास निनिन नमित्य ट्रम्प सोफा अंड्रासन रासलाव टेनिस फिजरा न ताने ते पियांस चते ओमनी रोकुल ते ओयन ना तमले लेफोरुन निस फंड्राइसना नारा नंद्राया ते ओटन फिट्टीन ले प्रेस दां इस मुझांस ते ना प्रेस दां फोटन एक आर्टे मोबिल ते फिर पेरां फुटसे ले सुरात ना टेंटेंस ऐ सेम बस सुरात प्रेस दां ते सान ना तो ने ने वे अंदो सुरात ना रा ओटन ये वेतना मेनो तुझी सन्ना तो न फुंड्रा कैसी स्टिलो इस

0: क्लास तुम कुफा भी
1: इति रेसका ना सिफुक्तान 15 ना सिफुक्तान दिया आउका जो तो ना रोम बांझा बता आउका जो तेन रीन फटेना सुल्तेना ने निफुतने हुआ आर्या तेना तुपना रेक्टे निफुतने हुआ मिला सुल्तेना तेना मा सुल्तेना न्यूले निफुतने ने आर मिला अतोची के वे पतार तेना मातार के लिखेन वहोका न्यूला ये निफुतने आउका चे अनाउन फनाउन देवालू या ना रेव एफा ऊला ना चांगा देवालू हुआ de indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola

0: कुलास तुमको फाफी
1: इजाय वोकन संभाव न्योल पिरेने नितानूर निलायंत दे मने उन्हें लायल ने